वाइन तू करे ब्लो बाकी करे शाइन तू करे ग्लो जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ बेबी लेट्स गो Right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव

0: time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: It's almost 17 after 8. Good morning.
2: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत। चैनल पार्टनर स्टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस।

0: House. Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.
2: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.

0: Tickets now from AXS or Ticketmaster, and book yours now before they are sold out, okay? Don't tell us you never told us. We did. Brought to you by Rock On Music, PRC Direct, Embryo Events, UK Event Life, and Tutors Valley.
1: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold, and Star Bharat.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.
0: मेकिंग द सेम मिस्टेक ट्वाइस और कमिटिंग योरसेल्फ टू द लव ऑफ योर लाइफ ऑल ओवर अगेन फॉर द सेकंड टाइम. दूजी बारी प्यार, विच ऑफ दीज टू इज इट, आप बताइए.

9:51 on a Tuesday, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. Did someone say it is the legendary Gulzar Sahab's birthday today? Of course it is. Wrapping up the hour with this beautiful gem from Andhi. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. Good morning.

0: अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत। चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस।
1: Sangeeta, thank you so much for this update. Your son Nikhil finished his NC500 route in Inverness and he actually ended up doing 650 miles. You are so proud of him, as indeed you should be. Well done. Emily in Bedfordshire, Saira in Cheltenham, thank you so much for your messages. Ulash in Toronto, welcome. Arijit Singh from Metro in Dino. तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मेरे शहर की बात कर रहे हैं, मेरे शहर की लंदन का मौसम और सुहाना, मजाक मत कीजिए प्लीज। Pretty sure he's lounging around in Paris, singing this song not for me but for somebody else. What do you think? Good morning.

0: Reworking a much-loved ghazal from the 70s. Munni Begum, I believe. तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में मुझे जमाना लगे।
1: Listener's Choice brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत। चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस।
3: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
0: Inadvertently, there seems to be a bit of a theme emerging. Munni Begum remixed, Madam Noor Jahan refixed.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन?
2: नो।
1: गोल्डी? सोल्डी?
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत। चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस।
4: Afternoon, friends. Kavita here on Sunrise Radio. Hello, hello, hello, hello. How are you getting on with my little game? So many of you getting in touch. But I gotta say, Zainab, Shalini, Saqib, you're the only ones with the right answer. Well done, my friends. But that's all right. There's still

0: time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: Time now is 4:20. Good afternoon.
2: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस

दूंगा दिल तेरा, ले कहीं तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच। बोली में थोड़ा रेयान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: रावी, क्या हो राजा?
1: गली में आजा।
2: होली होली
3: भांग की गोली और नखरे वाली।